0: मंगल दीप अगरबत्ती सूर्य नेपाल द्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन।
1: आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर्स शुक्ला गण्डकी 7 13 प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 98 560 20 279।
2: एक सय 3 थोप्लो 8 अन्तर्मनको आवाज।

0: जस पनी
1: ए उरा
0: क्या हो कि जस पनी गर्छ है ना जस पनी तिम्रो चाला माला दे।

उसके बाद मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल टूटा तो फिर दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर, जिसके लिए मैंने जमाना छोड़ दिया।

वो दिन किस दिन के बाद में आएगा, जिस दिन के बाद में तू किसी की बात में नहीं आएगा। मैं रातों में जागता हूँ और मसला ये है कि मेरा महबूब मासूम है, रात को घर से बाहर नहीं आएगा। दिल में उसकी तस्वीर कील से गड़ी हुई है, तस्वीर निकल जाएगी निशान नहीं जाएगा। राख बसती है जलने के बाद में, और कौन पागल है जो राख से दिल लगाएगा।

दिल से आज भी इस बात का सदमा नहीं जाता, एक खत है जो हमसे आज भी लिखा नहीं जाता। उसको इतनी जल्दी किस बात की थी कि चला गया वो, हमको तो उससे नजरें फेरना भी नहीं आता। न जाने किसकी बात में आने लगे हैं, जब से आने लगे हैं दूर जाने लगे हैं वो। अभी तो उनका हाथ मेरी हथेली में था, फिर मुझको क्यों याद आने लगे हैं वो। मैंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो दिया कि उनके दर्द का ख्याल करूं, नजरअंदाज किया कि शामें कहां बीतती हैं उनकी। ये अच्छा हुआ कि बिछड़न ने आपको नहीं तोड़ा, हम जानते हैं टूटकर हड्डियां भी नहीं बचती किसी की। खैर इस सब के बाद भी अगर आप चैन से सो जाते हैं, फिर आपसे क्या गिला करें कि आप हर किसी के हो जाते हैं। हम मुकद्दर के हारे सही, लेकिन मोहब्बत में सिकंदरों को भी हराते हैं।

0: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्ज।
1: स्टुडियो टाइम
2: अहिले दिउँसोको 1 बज्यो।
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।

0: 103 थोपलो 8 अंतरमन को आवाज
1: सेक्शन 1 स्टूडियो टाइटेन
2: अहिले साँझको 6 बज्यो टाइम चेक को साथ में मनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301
3: मृत्यु 21 जनाको उद्धार
4: र अन्तिम टी20 मा आज भारत र इंग्ल्यान्ड भेट्दै

0: 103.8
1: अन्तर्मनको आवाज
2: स्टुडियो साइन्सेट
3: अहिले रातिको 8 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टेशन 1 स्टुडियो साइड
2: अहिले बिहानको 5 बज्यो
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301